0: FM 102.3 MHz पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम

0: काम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। श्रोताओं, समय है 6:05। आइए सुनते हैं भक्ति धारा कार्यक्रम में भक्ति संगीत। भक्ति धारा कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, आइए इस गणेश भजन के साथ।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना से कार्यक्रम भक्ति धारा, जिसमें अभी आपने सुना अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ भजन। आइए सुनते हैं ये सरस्वती भजन।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान, स्वर्थ सुधा मल्होत्रा, राम किशन चंद्रेश्री और साथियों का। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM एंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी का ये कोना केंद्र है। आइए श्रोताओं, समय है लोकरंजनी में लोकगीत सुनने का, जिसमें आज के कलाकार हैं संजीव कुमार शर्मा व साथी। आइए सुनते हैं इनके गाए हुए लोकगीत।

0: श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले

0: वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रम जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शाम 6 बजे से आप सुन पाएंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात रहेगी संस्कारवान युवा ही सच्चे राष्ट्र निर्माता। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक के बारे में आप जान पाएंगे। 6:30 से आपको सुन पाएंगे आज की शाम के अंतर्गत फिल्म संगीत। 7:21 से आप सुन पाएंगे लोक रंजनी में लोकगीत। 7:30 से आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ग्राम सभा व 8 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 से हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आज इतना ही। कार्यक्रम विवरण यही संपन्न होता है। FM एंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी का ये कोना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया, कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। वीवीजी रामजी अधिनियम आज से होगा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति भयावह है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए चर्चा की है। संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है।
1: यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता पूर्वक कदम उठाए गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि
0: कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री को यहां की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी और हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी। श्री चौहान ने आज भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण, 494 करोड़ से अधिक लागत के 629 विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन और हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राज्य के कोदो कुटकी उत्पादक 3,941 किसानों के बैंक खातों में 2,82,99,300 रुपए की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। ये राशि किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदान की जा रही है, जिससे श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद भारती पारदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल से ही जीवन है और जीवन के लिए पानी की बचत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया है। कल राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए प्रदेश में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि
3: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन

0: 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर इन सब का पुनरुद्धार किया।
1: रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,000 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2,93,257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक कुल 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनके बैंक खातों में 1,010,25,00,000 रुपए की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर पात्र लोगों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। मानसून के चलते नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और शिवपुरी का माधव टाइगर रिजर्व आज से 30 सितंबर तक अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सतपुड़ा के मढ़ई और चूरना कोर क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ जिले में साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के 7वें दिन साइबर सुरक्षा रैली, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर के 100 सरकारी स्कूलों में ONGC CSR फंड और सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से करीब 70 लाख रुपए की लागत से RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 29 स्कूलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़वानी जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया। कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। बीबीजी रामजी अधिनियम आज से होगा लागू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम सुबह सवेरे का, जिसमें हम

बात करते हैं कुछ जन उपयोगी सूचनाओं की और सुनवाते हैं आपको फिल्मी गीत। तो आइए श्रोताओं, आपको बता दें कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर निशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। मीनाक्षी अस्पताल में शिविर का आयोजन बुधवार दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। शिविर में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएस कुशवा, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीएस कुशवा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमके जैन, पेट एवं जनरल सर्जरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएस कुशवा, हृदय शुगर ब्लड प्रेशर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल मीना, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनमोल बोधवानी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत सिंह मौजूद रहेंगे। शिविर में ओपीडी जांचें एक्सरे आदि निशुल्क रहेंगे। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं पहला गीत फिल्म प्रेम बंधन से। आवाज है लता मंगेशकर किशोर कुमार की।

श्रोता, अभी आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। प्रदेश में 6 जुलाई तक आयोजित सहकारी सप्ताह अंतर्गत गुना स्थित दुग्ध शीत केंद्र पर जनगणना कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों की उपस्थिति में सहकारी ध्वज फहराया गया तथा सभी उपस्थित सदस्यों को सहकारिता के प्रति निष्ठा और सहयोग की शपथ दिलाई गई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए दुग्ध समितियों परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी नवीन शर्मा, सहकारी निरीक्षक विजय गुप्ता, शिवम सिंघल जिला सहकारी संघ मर्यादित, गुना प्रबंधक सत्येंद्र शर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना गैम्बलर फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था नीरज ने, संगीत था SD बर्मन का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में गीत हम और भी सुनेंगे, पर उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण बुधवार 1 जुलाई को होगा। शिविर का समय सुबह 11 बजे से डीपीसी सभागार में होगा। प्रशिक्षण में नव साक्षरों को आगामी सितंबर 2026 में आयोजित होने वाली साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित कराने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अभिमान फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर मनहर उदास की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया एस डी बर्मन ने। आइए श्रोताओं, गीत और भी सुनेंगे इस कार्यक्रम में, पर उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है। ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कामचोर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाज में। संगीत राजेश रोशन का था, गीत इंदिवर का। श्रोताओं, कार्यक्रम में गीत हम और भी सुनेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें, जिले में गुलाब की वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में पहल करते हुए कलेक्टर किशोर कान्याल ने दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन और वैज्ञानिक विभाग के उद्यानिकी विभाग के सहयोग से 1 जुलाई को प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में निःशुल्क विशेष गुलाब खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रशिक्षण में बेंगलुरु के विशेषज्ञों द्वारा पॉली हाउस में गुलाब की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती, पौधों का समुचित प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई एवं फर्टिगेशन, पोषण प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण फूल उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग तथा अधिक लाभ अर्जित करने की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। किसानों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा।

ابھی آپ نے سنا عبداللہ فلم سے یہ گیت محمد رفیع کی آواز میں, سنگیت آر ڈی برمن کا, گیت لکھا تھا آنند بخشی نے. سائبر سرکشا کو لے کر پولیس کا جاگرکتا ابھیان سیف کلک 2.0 जारी है. इसी क्रम में मंगलवार को रक्षित निरीक्षक पूजा उपाध्याय एवं निरीक्षक रेडियो विकास उपाध्याय ने प्रातःकाल लाल परेड मैदान में मॉर्निंग वॉक को आने वाले युवाओं के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम किया. इस दौरान युवाओं को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए ऑनलाइन लेन देन, इंटरनेट मीडिया से के सुरक्षित उपयोग तथा व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी जानकारी प्रदान की. दरअसल पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसके अंतर्गत गुना पुलिस द्वारा जिले भर में साइबर सुरक्षा को लेकर विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं. अभियान के सातवें दिवस पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक, जनसभाएं, जागरूकता रैलियां एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर आम जन, विद्यार्थियों एवं युवाओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया.

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइश पर अनुरोध गीत। तो आइए श्रोताओं, आपकी पसंद पर सुनते हैं इस कार्यक्रम के आरंभ में ये गीत आशिकी फिल्म से।

श्रोताओं, आपकी पसंद पर अभी हमने सुनवाया आपको आज की फिल्म से ये गीत अनुराधा पोडवाल कुमार शानू की आवाज में। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी हमारे श्रोताओं ने। डोंगर गांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गज भीए, राधिका गज भीए, बेबी अनिष्का और तनमय गज भीए ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी हमारे श्रोताओं ने भी। बणभूजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा दुर्गा परिवा, सुषमा कपूर जी व सुषमा कपूर जी मधुबाला मिलन ओम प्रकाश ने। आई श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना दहेक फिल्म से ये गीत। इस गीत की फरमाइश मलिक भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोताओं ने भी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश ने। आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने सुना कुमार शानू अलका याग्निक की स्वर में इंग्लिश बाबू देशी मेम से ये गीत। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। गुलाबगंज से रजनी सक्सेना मोन।

0: बहादुर कुशवाहा नई सड़क से सुबोध श्रीवास्तव श्री राम कॉलोनी से राम भरोसा बैरागी पीजी रोड गुना से महेंद्र यादव गुड्डू यादव ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शारिक शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ मोहम्मद सादाब खत्री ने इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी थी हमें गांधी चौक क्रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलवंदर मीका जयतेग बिरक और मीका बिरक ने श्रोताओं कार्यक्रम में आपकी पसंद के गीत हम और भी सुनेंगे पर उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के
3: तुम्हें पता नहीं है शायद संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है समझे
2: हाँ भाई समझा
3: तो संयम वफादारी और कंडोम अपनाओ सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं और हाँ अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

अभी हमारे श्रोताओं ने सुना उनकी फरमाइश पर ये गीत 1942 लव स्टोरी फिल्म से। आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति कुमार शानू की, गीत लिखा मुकुल दत्त ने, आर डी बर्मन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार, गोलू, कृष्णा, शिवा, वर्षाबाई, पूनम, सुमन, निकिता और मोहनी कुशवाहा ने, और इन्होंने हमें पत्र भेजा था पुरानी छावनी सकतपुर रोड गुना से। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने भी, पुणे से पंकज बड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बड़ोदे, चंद्रप्रभा बड़ोदे ने। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने। श्रोताओं कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति, आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कुमार शानू पूर्णिमा की आवाज में ये गीत गोपी कृष्ण फिल्म से। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। द्वारिका छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, सूरज ठाकुर, तारनी ठाकुर, सुमन ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने। श्रोताओं, आप अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है अनुरोध गीत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी गुना माधवरा सिंधिया मार्ग मध्य प्रदेश। हमारा पिन नंबर है 473001। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हम यही संपन्न करते हैं। दीजिए इजाजत। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। श्रोताओं, समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। आइए सुनते हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं।

0: ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
0: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है
1: जी।
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी
0: जी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800044

0: क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: वाह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर

0: स्थापित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह।
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर

सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं।

0: इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद मैम।
3: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
4: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है, तभी मैं कहूँ कि जंगल

आकाशवाणी के गुना केंद्र से आप सुन रहे कार्यक्रम एक फनकार में एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म है आन मिलो सजना।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फनकार, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक फनकार फिल्म से एक फनकार फिल्म के गीत।
1: So when a new

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एक फनकार में आज एक ही फिल्म से, आन मिलो सजना, जिसमें इस फिल्म को 1970 में बनाया गया, जिसे एक प्रसिद्ध हिंदी संगीत में ड्रामा फिल्म कहा गया। इसे मुकुल दत्त ने निर्देशित किया था और इसमें राजेश खन्ना और आशा पारेख मुख्य भूमिकाओं में थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक सुपरहिट साबित हुई थी और इसका संगीत बेहद लोकप्रिय रहा था। यह 1970 में रिलीज हुई थी। आनंद बख्शी ने इसके गीत लिखे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत बनाया। इस फिल्म की संक्षिप्त कहानी यह थी कि यह एक अमीर विधवा सावित्री चौधरी और उसके बिगड़े हुए बेटे अनिल यानी कि विनोद खन्ना के इर्द गिर्द घूमती है। अपनी माँ की संपत्ति पाने के लिए अनिल एक लड़की यानी कि आशा पारेख को अपनी मंगेतर के रूप में किराए पर लाता है, जो वास्तव में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अजीत राजेश खन्ना से प्यार करती है। इसके बाद फिल्म में कई अप्रत्याशित मोड़ और रहस्य आते हैं। आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

0: आज नहीं कल,
1: क्यों क्यों
0: आज नहीं कल,
1: ये तो
0: अच्छा तो हम चलते हैं।

श्रोताओ आप सुन रहे हैं एक फनकार में ये एक ही फिल्म से गीत, तो आइए सुनते हैं आन मिलू सजना फिल्म से ये गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे एक फनकार कार्यक्रम में एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म थी आन मिलो सजना। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मानसून और प्रशासनिक तैयारियों की। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में जून माह में औसतन 743.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की शुरुआत होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नगरपालिका परिषद बड़वानी द्वारा मानसून के दौरान शहर में संभावित जल भराव, बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि बारिश में यदि शहर के किसी भी क्षेत्र में जलभराव या अन्य कोई समस्या होती है तो नागरिक सतर्कता बरतें और तत्काल राहत व बचाव दल से संपर्क करें। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य की, जिसके तहत बड़वानी में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 2,61,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मृदा परीक्षण और कृषि विकास के क्षेत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले को इस वर्ष 7,718 मिट्टी परीक्षण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अभी तक 7,178 मिट्टी नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब बात नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता की, जिसके तहत पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के दौरान गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं और समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 24 मार्च से जिले भर में चलाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिदिन 100 कैदियों की टीबी की स्क्रीनिंग की। अब बात आपदा प्रबंधन और युवा शक्ति की। पिछले दिनों 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे सत्र का समापन हुआ। इस सत्र के दौरान जिला आपदा प्रबंधन के आदेश से बाढ़, बचाव व सिंहस्थ कुंभ के लिए 231 युवाओं को संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं खेल जगत और बड़वानी के गौरव की। हॉकी इंडिया द्वारा ओमान में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए अंडर 18 महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें बड़वानी शहर की स्नेहा दावड़े को पुनः भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं व्यापार और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता की, जिसके तहत पिछले दिनों दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में सेंधवा में SC/ST उद्यमिता जागरूकता एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं सिकल सेल नियंत्रण की, जिसके तहत पिछले दिनों विश्व सिकल सेल दिवस पर आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एड ऑन थेरेपी के रूप में

सिकल सेल से प्रभावित 201 रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण घर घर जाकर किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर जयति सिंह, एसपी पदम विलोचन शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र व नागरिक उपस्थित थे। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिले में किया गया। कार्यशाला के दौरान उपसंचालक डॉ. दिनेश पटेल ने पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, संतुलित आहार बनाने की विधि और दुग्ध उत्पादन के लाभ तथा साइलेज की ई मार्केटिंग व गोरस एप्लीकेशन की जानकारी प्रदान की। बड़वानी जिले की चिट्ठी में अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की। साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने, आमजनों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिले में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और अंत में बात जल संरक्षण और जलगंगा संवर्धन अभियान की, जिसके तहत बड़वानी जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन सहित विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया। वहीं कल यानी 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिले में कुल 5,666 विकास कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके चलते जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो श्रोताओं, ये थी बड़वानी जिले की चिट्ठी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो FM गुना। प्रस्तुत करता है राजकुमार कौशल।

0: हेलो नमस्ते सर
1: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
0: सर जी मैं यहां से बोल रहा हूं, माहौर गांव से।
1: जी शुभ नाम बताइए अपना, माहौर गांव में।
0: नाम है देवी सिंह कुशवा।
1: देवी सिंह कुशवा जी?
0: जी।
1: क्या करते हैं देवी सिंह जी आप?
0: सर जी मैं यहां पर कुछ नहीं करता हूं, अब आम की छाया में बैठा हूं, टावर पे रहता हूं यहां पे गांव में।
1: अच्छा अच्छा, टावर पे आपके नौकर?
0: आम की छाया में बैठा हूं।
1: अच्छा, पेड़ की छाया में बैठकर आप आनंद ले रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो हरिया गीत अपने पसंद का?
0: एफएम की।
1: जी जी, तो कब से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गुना के कार्यक्रम?
0: बचपन से छोटे से ही सुन रहा हूं सर जी मैं।
1: अच्छा, मतलब काफी पुराने श्रोता हैं आप हमारे।
0: हाँ जी सर, मुझे
1: तो
0: गाना
1: आज
0: सुनना है।
1: जी जी, आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
0: सर जी मैं सुनना चाहता हूँ सनम बेवफा, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो।
1: आपने आकाशवाणी गुना में कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफ एम गुना।
1: हेलो नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं कैलाश सेन, गांव चेरास
0: जी। कैलाश सेन जी, क्या करते हैं आप
1: जी? किसानी करते हैं सर।
0: किसानी करते हैं,
1: कुछ भैंसे हैं, गन्ने हैं
0: जी। तो साथ में पशुपालन भी चलता है आपका?
1: हाँ जी। अब दोबे लग गए तो कट गए, तुम्हारी आवाज मुझे खूब आ रही थी
0: जी। वो किसी तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही थी।
1: हाँ जी सर, जी सर।
0: चलिए, आपका फोन लगा, आप बताइए किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आज आप?
1: सर फिल्म का नाम है भीगी पलक है
0: जी। गीत के
1: बोल, गाने के बोल हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा।

0: हेलो अरम गुना।
1: हाँ सर नमस्कार। सर
0: जी नमस्कार, कैसे हैं?
1: नमस्कार सर जी, मैं नई सड़क से बोल रहा हूँ, सुबोध कुमार श्रीवास्तव।
0: जी सुबोध श्रीवास्तव जी, हमारे नियमित श्रोता हैं आप।
1: जी जी सर
0: जी, बताइए कैसे हैं और क्या सर, चल रहा है?
1: बस बढ़िया, थोड़ा गर्मी कम होने का अंदाजा चल रहा था, बस इन मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए।
0: जी जी, अभी तो वैसे जी हाँ नौ तपा चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिन निकले हैं, अभी कुछ दिन शेष हैं, तो वो शेष दिन तो हमें संभल कर रहना होगा।
1: मौसम विभाग तो कह रहा था देखा, तो दिन में मौसम चेंज हो सकता है।
0: जी हाँ, सुनने में मिल रहा है, तो देखिए अगर हो जाता है मौसम चेंज तो कुछ राहत मिलेगी गर्मी से।
1: नहीं बिल्कुल, आज मैं भी श्री बिहारी जी का ओपी नैया जी का एक गाना सुनना चाहूंगा।
0: जी जी बताइए।
1: आवाज़ मोहन कपूर जी की है
0: जी,
1: और फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी भाव से होने ना देगा।
0: आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत

0: मैं अनिल कुमार बारेला बोल रहा हूँ, ग्राम तारापुर से।
1: जी कहाँ पड़ता है ये?
0: ये मार्की मोड़ क्षेत्र में पड़ता है
1: जी,
0: सिरपी थाना
1: जी, गुना, जिला गुना।
0: हाँ जिला गुना है
1: जी। क्या करते हैं अनिल कुमार जी आप?
0: सर मैं लाइनमैन में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ,
1: और उसके साथ साथ कोई और काम?
0: उसके साथ साथ मैं खेती करता हूँ सर
1: जी। बहुत बढ़िया।
0: हाँ
1: तो आज आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं अनिल जी?
0: सर चांदनी फिल्म का कोई हिस्सा भी गाना।
1: तो आप आपकी पसंद नहीं बताएंगे, हम चांदनी फिल्म से कोई भी गीत आपको सुनवाएं।
0: हाँ कोई भी।
1: चलिए आपकी पसंद का यह नगमा हम आपको जरूर सुनवाएंगे, फिल्म चांदनी से। आपने आकाशवाणी गुना में कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम।

0: बड़ी मस्ती करता है तू मेरी सोना सोना सोना सोना।
1: मोनिका बोल रही है सर, गुना से।
2: जी मोनिका, मोनिका जी क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं सर, घर पे ही रहते हैं।
2: अच्छा, घर पे ही रहते हैं। अभी क्या

0: रहा है, पढ़ाई चल रही है कि पढ़ाई पूरी हो गई आपकी?
1: पढ़ाई पूरी हो गई है, सिलाई चल रही है, अभी सिलाई सीख रही
0: है। अच्छा, अभी सिलाई सीख रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी में एक आप कोर्स कर रहे हैं सिलाई का। और मोनिका जी, आप आकाशवाणी गुना के प्रोग्राम सभी सुनते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन से प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं ज्यादा? हेलो
1: हेलो,
0: आपको कौन से प्रोग्राम पसंद आते हैं आकाशवाणी गुना के?
1: देशभक्ति सॉन्ग।
0: अच्छा अच्छा, तो आज किस फिल्म का गीत सुनने की आपने फरमाइश भेजी है हमें? किस फिल्म का गीत सुनना?
1: गाना सुनना है मुझे ममता की, मंदिर की है सबसे प्यारी मंदिर।
0: आपने आकाशवाणी गुना में कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: मैं बुरिया ओझा।
0: जी? कहाँ से बोल रही हैं बुरिया जी? आप क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, और इसके साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं, और आज आपने आकाशवाणी गुना में जो कॉल किया है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: सर, मुझे दाता फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: गीत के बोल याद हैं आपको?
1: बाबुल की दुआएं लेती जा।
0: आपने आकाशवाणी गुना में कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना
1: जी, नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार।
1: एमपी की राजधानी से बोल रहे थे, देवी सिंह कुशवा।
0: देवी सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: एमपी की राजधानी से, भोपाल से।
0: अच्छा, एमपी की राजधानी। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि एमपी की राजधानी से आप बोल रहे हैं। क्या करते हैं देवी सिंह जी आप?
1: सर जी, धंधे पानी से लगे थे।
0: अच्छा, क्या धंधा पानी करते हैं?
1: सब्जी बेचते हैं गाँव में।
0: अच्छा अच्छा,
1: मोटरसाइकिल से करोत की मंडी से सब्जी खरीद लेते हैं।
0: जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप
1: जी।
0: तो आज आपने आकाशवाणी गुना में जो कॉल किया है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मृत्यु दंड, वो गाना है, कह दो एक बार सजना। हेलो
0: जी, आपकी पसंद का नगमा हम आपको जरूर सुनवाएंगे देवी सिंह जी।
1: जी सर जी, शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, आप थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ धीमी आ रही है।
1: जी मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से बोल रही हूँ जी, संत प्रभाकर
0: जी। उड़ीसा से
1: जी,
0: कैसी हैं मैम आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ जी सर जी, मैं बहुत अच्छी हूँ बहुत, और सब बढ़िया है हमारे यहाँ, सब बढ़िया है। और
0: अच्छा
1: है, गर्मी बहुत है जी।
0: जी हाँ, गर्मी तो सभी जगह है, वहाँ क्या चल रहा है अभी दिन का तापमान?
1: अभी दिन का तापमान 43-44 यही चल रही है
0: जी। मतलब ये कि 43 से 45 तक सभी जगह इस समय गर्मी का माहौल बना हुआ है। तो आकाशवाणी गुना के सभी प्रोग्राम आप सुनती हैं मैम?
1: नहीं नहीं जी, सच कहने से मैं सभी प्रोग्राम तो नहीं सुन पाती, यही प्रोग्राम तो मेरे एक श्रोता भाई ने दिया कि तुम कॉल करो, ये हर दिन ये प्रोग्राम आता है, तो मैं आज पहली बार कोशिश की तो लग गई।
0: अच्छा नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आकाशवाणी गुना में कॉल किया, और हमारे यहाँ से नियमित ये कार्यक्रम जाता है, इसमें आप फरमाइश की गीतों को सुन सकते हैं, रोज हमें कॉल कर सकते हैं और
1: जी, ये प्रोग्राम 10 बजे से 10:30 तक की
0: क्या जी? किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आज आप?
1: जी आज गाना सुनेंगे जी, मुझे तो पुराने गाना बहुत अच्छी लगती है, और गाना सुनेंगे जी ब्लैकमेल फिल्म का गाना सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, पल
0: जी।
1: पल दिल के पास तुम रहती हो,
0: और सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये नगमा। आपने आकाशवाणी गुना
1: जी,
0: नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं गौरव ओझा बोल रहा हूं, मैंने फोन लगाया था परसों।
0: कहां से बोल रहे हैं गौरव ओझा जी?
1: यहां से बोल रहा हूं, बूढ़े वाला से।
0: जी आज आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं? आपने किस फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश भेजी?
1: पतंग का फिल्म का सुनना है, वो शमशाद बेगम की आवाज में गाना है सर।
0: गीत के बोल याद हैं आपको?
1: वो है पिया भाई रंगून वाला।
0: आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जब भी हमें कॉल करें तो ये देख लें कि आपके पीछे कहीं शोर तो नहीं हो रहा और आपके पास नेटवर्क सही आ रहा है या नहीं, तभी आप हमें कॉल करें। और एक बार और कहना चाहेंगे कि अगर आपका कॉल आज शामिल किया गया है इस कार्यक्रम में तो आप हमें अगले 2 सप्ताह तक कॉल ना करें, जिससे हमारे और नए श्रोता हमसे जुड़ सकें। आज इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया मुकेश चौहान ने और प्रस्तुति सहयोग रहेगा हरिशंकर शिवहरे का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजकुमार कौशल और आज इस कार्यक्रम का सफर तय किया आपने अपने रेडियो हम सफर आशीष सक्सेना के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हेलो एफएम गुना, प्रस्तुत करता थे राजकुमार कौशल। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म ताजमहल की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाजों में। साहिल धानवी के बोल थे रोशन का संगीत था।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गजल आप सुन रहे थे अपनाज मसानी की आवाज में। कतील शिफाई का कलाम था, पीलू जी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब

0: दी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल, रफीक हुसैन और रफीक जयपुरी की लिखी ये गजल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद जाही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजय शाह का सर्वधिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई बाहों में खिली पहनियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलीशा चिनॉय को आपने सुना एल्बम थी मेड इन इंडिया। अलीशा चिनॉय बिड्डू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिड्डू की तर्ज थी।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी।

0: इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है, यादों की महफिल।

0: दिलदर बर्मन की तर्ज थी मंजूर सुल्तान परी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देवबर्मन का। फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: टोबी नायर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज में तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराए है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराए है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

खरे खरे जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आजा प्यार को बता दूं मैं।

कुमार बरवंगी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज फिल्म में यह आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब यादों की महफिल, ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: धरती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहाँ भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमां उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहाँ कुछ रहने भी दें, जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाए, जब मोहब्बत के दीप जले तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबारत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। तो श्रोताओ, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियान होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखे भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें जरूर बताएं। क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं, और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समुंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है।

करता है। प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा रंग महल के दस्तरवाजे। बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है। यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुशफहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात ताबीरें बदगुमानी इबारत ऐसे सजी है। इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी। एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे। तो देखते हैं और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है। देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तू जब भी मुस्कुराता है पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे ये दिल ना होता बेचारा रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे रंग महल हसीना चोरी चोरी चुपके चुपके शबनम रेशम की डोर दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से और लाखों है निगाह में। इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती होंगी। कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं या फिर बहुत बड़ी गलत फहमियाँ देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफर पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे जरूर साझा करें।

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहां खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर भी गलतफहमी और खुशफहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है, कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहां खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाए, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है, मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने ऐसा मुझे याद पड़ता है मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल जो गलत फहमियां हैं उन्हें मिटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है, आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है, अजब बंदिश अजब आजादी के दरमियान हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओ। शशि कपूर इस फिल्म में है और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं।

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं। श्रोताओं, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। इस फिल्म में बड़ी अजब सी गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था। लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बुदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे, और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की बात होती है। श्रोताओं, गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलत फहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो

एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती है, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, जबकि खुश फहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुश फहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

दो जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहती अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि

आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हुए हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समुद्र जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं।

ये गलत फहमी भी श्रोताओ अपने आप में बड़ी खास होती है कि जिधर देखो बस एक ही तस्वीर नजर आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बैठे कहीं और हैं लेकिन आपको बस वही वो दिखता है या दिखती हैं या दिखती हैं चीजें जिन्हें आप मन में सोच रहे होते हैं। मसलन जब आप समुद्र किनारे बैठते हैं

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं, क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं ये कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलत फहमियां पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो मोहित पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे, तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। उठे अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोणों से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीफ देवानंद अशोक कुमार वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही है जो असल जो चोर है, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हां कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरारे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलत फहमियां आवाज में होती हैं, तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था, मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज थी और छोटा और दो जो कलाकार हैं, गायक कलाकार, उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म, इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

अच्छे अच्छे और फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं। और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

अमोल पालेकर और जरीना बहाव पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाजें थी सुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी

बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं। तब आप और हम यही कहते हैं।

ईश्वर के बाद जीवनदायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप सम्मान दें।

माना जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में, जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।

0: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो

0: अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the Sustainable Development Goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: इंडिया एंगेजमेंट
5: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है,
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए

0: निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: दुल्हन एक रात की स्वयं का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार आरती, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
1: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
0: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: और बहुत अच्छा लगता है, अपना एक आनंद अलग ही है आरती
1: जी। बिल्कुल,
0: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
1: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
0: उसका एक अलग ही मजा है। बिल्कुल, बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
1: बहुत सच में बारिश जो होती है ना, एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
0: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
1: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
0: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
1: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
0: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
1: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
0: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखी और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया,
0: मैं करके
1: बताऊं। हाँ, तो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में।
0: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है।
0: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा,
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जो हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है? कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल

0: किया
1: जी है ना, बताइए।
0: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले। और
2: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत कर रखा,
0: व्यंजन लेके आई
2: है। बिल्कुल,
1: मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा रहता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
1: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
0: कौन से बेसन के, और
2: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच
0: ले
2: कल्पना करके उसको हम खा ले।
0: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सिक्योर सका और हम उसे खा भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम है।
2: बिल्कुल, तो एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात कि मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं,
0: हाँ,
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं,
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं,

0: मतलब पहचान होती तो आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना
0: जी। बिल्कुल,
1: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें बता देते हैं कि आप ये दवाइयां ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
0: जी,
1: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
0: जी।
1: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते।
0: बिल्कुल,
1: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
0: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना। हाँ। कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक है वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी वो केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है। तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, या उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
0: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती की, हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
0: जी हाँ,
1: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए, अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ, तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे, और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
0: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी, अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं, तो फिर जाते हैं उनके पास तो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है, तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं।

0: समझते हैं तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना कंट्रोल चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकौड़े खिलाएंगे ना हमारे तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
0: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
1: बिल्कुल, अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
0: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं। सादा जो भोजन होता है वही सादा भोजन,
1: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
0: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
1: ऐसा बहुत तरीके हैं खाने के,
0: बहुत अच्छा
1: तो
0: लगता है।
1: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे।
0: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
1: बिल्कुल, और भी किसी ने कुछ लिखा?
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपके वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं, पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
0: जी, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो है डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक महश्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। तो वही एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता।

0: होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें तो हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
1: तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा है उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब

0: हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसल साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम, जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीली और भूरे रंग की चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़ बेल कलियां पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल।
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल। बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाए थे आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ,
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ, वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म

0: करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है।

0: में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
1: बिल्कुल, और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल, वही श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
1: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
0: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
1: कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
0: हाँ।
1: फिर हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
0: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
1: बिल्कुल,
0: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
1: आप कभी किसी के चेहरे पे खुशी दे सके,
0: हाँ,
1: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
0: प्रतियोगिता
1: चेहरे की हंसी देख के आपको लगेगा
0: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
1: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं, वहां से हारते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत
1: जी।
0: अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें,
1: और वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी है। हाँ। अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे है, भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने। तो बात करते हैं, पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाए, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिलाकर पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए।

0: उसमें कल्पना में लग गई थी कि
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखते हैं कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है। देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया है ना।
0: मैंने कहा ना
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है गुजराती पकौड़े के ही शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आती बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
1: तो पकौड़े बहुत खाली हैं, गीतों का आनंद
0: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा।
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी

0: विद्यालय में नियुक्ति हो गई, वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
0: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
0: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
0: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
0: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूं ठीक से, उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
0: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
0: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं लिख सकता हूं। मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
0: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं।
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस,
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश,
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था।
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था।

0: भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा
0: जी? एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राणी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: शंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन सन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझें, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अविधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना, जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का, जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल, कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तीसरा जो है वो अंधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों के पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3 पेज 4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के शनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है, जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है।

0: इनके साहित्य का संग्रह, यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में और हम व्यंगकार दावा करते हैं कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतीय हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी,
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी,
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
1: है। पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था। बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं। समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी,
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंगी है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रही हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है। जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है। प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक

0: प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगत इनका साज ठीक होना चाहिए।
1: जी बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
0: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
1: जी
0: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे और उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए, उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
1: जी
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
1: जी
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं हो पाया। जी
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग सभी पर लिखा जा सकता है, या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं, या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहां तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है।
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी

0: निर्भर पर होता है कि हमने क्या चुना है
1: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
0: मतलब वैचारिकता तो, होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी
1: चाहिए। उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
0: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
1: जी।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
1: जी जरूर। कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: क्या बात है?
1: ये मैं चाहूंगा कि आप सुन रहे
0: हैं।

0: आदिशंकर जी, जी तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचना

0: रोचक नहीं हुआ है
1: जी।
0: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो
1: जी, जी।
0: तो मुझे लगता है कि समाज को साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है
1: जी। तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग केवल एक हास्य की विधा है
0: जी,
1: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है
0: जी।
1: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा
0: जी, जी।
1: तो क्या पाठकों का व्यंग को समझने का नजरिया बदला है?
0: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं
1: जी।
0: सीधे किसी दल किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही है, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा
1: जी। जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
0: जी,
1: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
0: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहां सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी
1: जी, जी।

0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन यायावरी से होता है।
1: दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: है ना। तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के

0: लिखा, तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है।

0: लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
0: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
0: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अंदर जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
0: जी
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विश्व में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने इंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए
1: जी।
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बने जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आज विश्व विख्यात मूर्धन्य बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्मदिन है। इस अवसर पर आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग, जिसे साल 2012 में दीपावली के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था।
1: ये है विविध भारती।
2: नमस्कार श्रोताओं, संगीत जगत के बेहद प्रतिष्ठित और मूर्धन्य कलाकार हैं बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पिछले कई दशकों से आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने बांसुरी वादन से संगीत रसिकों को सम्मोहित करते आ रहे हैं। आज आपके बीच पंडित हरि प्रसाद चौरसिया छेड़ रहे हैं अपनी स्मृतियों की बांसुरी। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।

0: आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: श्रोताओं, संगीत जगत का एक बहुत ही सुरीला, एक महत्वपूर्ण और जरूरी वाद्य है बांसुरी, यानी कि वेणु, यानी कि वंशी। और इस वाद्य को आप हरि प्रिया कह सकते हैं। हरि जी, जैसे कि आपके बारे में हमने पढ़ा है, बचपन आपका जिस माहौल में था, पिताजी को पहलवानी का शौक था, लेकिन आपको बांसुरी से कैसे लगाव हो गया, कैसे इससे प्रेम हुआ आपका?
1: एक्चुअली मुझे बांसुरी से लगाव नहीं था
0: जी,
1: लेकिन मैं गुनगुनाता था, और गुनगुनाता था तो कभी फिल्मी गाने, क्या मिल गया भगवान तुझे दिल दुखा के, अरमान की नगरी में आग लगा के गुनगुनाया करता था। तो मेरे स्कूल में, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, तो टीचर जब मैं गुनगुनाता था तो उनको अच्छा लगता था, तो बोलते थे कि कभी मेरे स्कूल का कोई फंक्शन हो तो तुम जरा गाना। तो मैं फिल्मी गाना गा दिया करता था, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा जब हमारे स्टूडेंट हमको बहुत प्यार करने लगे, अरे गाना गाते तो गाओ गाओ, तो मैं गाता था। उसके बाद मुझे फिर भजन वजन से बहुत शौक हो गया, तो मंदिरों में जो भजन होता था, जन्माष्टमी का पर्व हो या दशहरे का पर्व हो या कोई भी पर्व हो, तो इलाहाबाद एक ऐसा शहर था कि जहाँ लोग हमेशा पूजा पाठ और इसमें लगे होते थे, तो उसमें भजन मैं गाता था। तो मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कैसा गाता था ये मुझे तो याद नहीं है, लेकिन लोग बहुत खुश होते थे, ये मुझे बहुत याद है। तो बांसुरी का शौक तो बहुत बाद में, जब मैं 9 वर्ष का था। मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, पिताजी के पहलवान होने के वजह से मुझे उनको बताने के लिए डर सा लगा कि मैं संगीत से प्रेम करता हूँ, और अगर मेरी संगीत से प्रेम करने की ऐसी ताकत ईश्वर ने दिया है तो मैं आपसे डरता किस लिए हूँ कि आप हैं पहलवान, आप चाहते हैं कि मैं भी पहलवानी करूँ, और अगर मैं पहलवानी करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं गाना गाऊँ तो आपको अच्छा नहीं लगता।

तो इसका उपाय क्या निकाला जाए। तो मैंने यही सोचा कि पिता को खुश करने के लिए मैं अखाड़े में जाऊंगा, कुश्ती लड़ूंगा और उनको खुश करूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को शांति के लिए मैं कहीं कोने में कहीं छिप के गा लूंगा। तो ये मेरे जीवन के सफर की शुरुआत हुई। और उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 9 साढ़े 9 साल का, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने की रेंज ठीक नहीं, जो वोकल कॉर्ड की एक रेंज होनी चाहिए कि 2 ऑक्टेव या 2.5 ऑक्टेव, वो नहीं थी। 1 ऑक्टेव थी, दूसरे ऑक्टेव जाने से थोड़ा गला कर्कश सा हो जाता था। तो मैंने एक, हमारे गुरु जी थे पंडित राजा राम जी, मैंने उनको सुनाया कि मैंने कहा कि मैं कुछ इसको बढ़ाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और रोज स्कूल में फिल्मी गाना और ये मुझे ठीक जमता नहीं। तो मैंने जब गाना शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम्हारे वोकल कॉर्ड की रेंज कम है, तो तुम गायक, अच्छे गायक बन नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारी रेंज नहीं है। गाओगे 1 ऑक्टेव, उसके बाद जब दूसरा ऑक्टेव आएगा तो तुम दुखी होगे, तो तुम ऐसा करो कि कोई ऐसा वाद्य चुनो कि जिससे तुम गा सको, वाद्य को पकड़े रहो लेकिन तुम्हारा गाना चलता रहे उस पर। तो मैंने बहुत सोचा। एक बार मैंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में एक बांसुरी का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने सुना तो मेरा दिल एकदम, क्या कहूँ आपको, इतना गदगद हो गया, इतना अच्छा बजा रहे थे। उस दिन से दिल में बैठ गया कि अगर मैं बजाऊंगा तो ये वाद्य, क्योंकि बांस का टुकड़ा अगर पकड़ूं तो उसमें तार तो है नहीं, चमड़ा तो है नहीं, ट्यून तो करना नहीं, उसको सिर्फ पकड़ के गाना है तो क्या है। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यही करूँगा।

0: हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य की परंपरा, वो कहते गुरु बिना तो ज्ञान नहीं। आपको ये ज्ञान तो हो गया कि बांसुरी आपको बजानी है, बांसुरी आपको अच्छी लगती है, लेकिन अब सीखना भी तो है उसको, तो इसके बारे में किसने बताया, कैसे खोज हुई गुरु की?
1: यही तो बात है, मैं जब सुना तो मैं पागल सा हो गया। तो मैंने कहा ये महापुरुष से मैं कैसे मिलूं, इनके दर्शन कैसे हो? तो मेरा कोई एक आदमी था, बोले वो एक रेडियो में ये साहब नौकरी करते हैं, ये स्टाफ आर्टिस्ट हैं, ये जब सुबह जाते हैं साइकिल में अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहन को, तो आप इनके पीछे पड़ो, इनको बोलो कि इस दिन प्रोग्राम हो रहा था, कौन बजा रहा, कहाँ है। तो मैं दो तीन दिन वेट किया, मुलाकात नहीं हुई, तो एक दिन मुलाकात

0: हो गई, जा रहे थे साइकिल पर, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे एक उत्तर दीजिए आप। बोले क्या? मैंने कहा इस दिन एक कार्यक्रम आ रहा था, बांसुरी बज रहा था, कौन सज्जन बजा रहे थे? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं ड्यूटी पे था, उनका नाम है पंडित भोलानाथ प्रसन्ना। अरे मैंने कहा जरूर मुझे कैसे मिलवाएंगे, तुम आ जाओ। तुम तो मैं उस समय 9.5 या 10 साल का था, तो मैं गया रेडियो में हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहन के, स्कूल से भाग के निकल गया। तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो भी बहुत अच्छे, बहुत सज्जन पुरुष। तो उन्होंने कहा तुमने बजाया? मैंने कहा कभी नहीं बजाया। तो बोले घर में आना, यहाँ मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी रिकॉर्डिंग है मेरा, घर में आना। तो मैं घर में गया तो उनसे बताया, तो उन्होंने कहा मैं जरूर सिखाऊंगा। वो भी बैचलर थे, अकेले रहते थे, तो उनको भी आवश्यकता थी, खाना अपने हाथ से बनाते, तो उनको भी चाहिए थे कोई मेरे जैसा लड़का हो कि दौड़ के थोड़ी सब्जी ले आया, थोड़ा सा मसाला ले आया, थोड़ा कुछ उनको जो जरूरत हो लेके आया। तो हम साथ ही खाते थे और साथ ही बैठते थे और साथ ही चर्चा करते थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और बड़े मेहनत से सिखाया कि बांसुरी क्या होता है, बांसुरी को किस तरीके से कितनी फूंक देनी चाहिए, बांसुरी को कैसे पकड़ना चाहिए, और बांसुरी में जो होल्स हैं उसको किस तरीके से, हाफ होल पकड़ने से कोमल होगा, पूरा उंगली खुलने से शुद्ध स्वर होंगे। तो बहुत सारी बातें बताई,
1: यहां से आपकी शुरुआत होती। तो हम भी यहाँ आप ही की बजाय बांसुरी के राग छेड़ते हैं।

0: पंडित जी, उत्सव हमारे जीवन का संगीत है
1: जी।
0: आपके बचपन में दीपावली कैसे हुआ करती थी, उसके बाद में जब आप बड़े हुए तब दीपावली का उत्सव क्या होता था
1: जी? उत्सव के बारे में मैं ये कहूंगा कि मैं जहां मेरी पैदाइश हुई, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद शहर, वहां पर मैंने देखा बचपन से हर दिन ही उत्सव होता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि उत्सव ना हो। कभी तो होली आई, कभी दिवाली आई, कभी दशहरा आया, तो कभी रामनवमी आया, तो कभी कुछ, रोज ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। उत्सव तो बंद होते ही नहीं वहां पर, और मंदिर है तो रोज वहां पूजा भी चलती रहती, प्रसाद भी मिलते रहते, तो लगता है कि कमाल है, वाह। और प्रसाद भी ऐसा कि मखाने की खीर है, तो लड्डू है तो देसी घी के, तो मोतीचूर का लड्डू है, तो ये सब खाने का, और ये सब तो लगता था कि भगवान के रोज ही उत्सव, तो उत्सव चलता रहता। दिवाली, दशहरा और होली, ये तीन बहुत ही खास उत्सव। दिवाली 4-5 दिन होती है, वैसे तो

दो दिन होनी चाहिए, लेकिन महीनों पहले से वो कौड़ियाँ और ये सब शुरू हो जाते हैं, रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, लोगों के घर से मिठाइयाँ आती हैं। हमारे घर से मिठाइयाँ लोगों को जाती थी, हम हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, थोड़ा सा गुड़ उड़ करके हमारे पिताजी भिजवा दिया करते थे, लेकिन दूसरों के घर से जलेबी, लड्डू, पेड़े, बर्फियाँ सब आते थे, खूब खाते थे, खींच खींच के खाते थे। उस समय यह एहसास नहीं था कि डायबिटीज़ भी कोई चीज़ होती है। आज सुनने में आता है कि ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, उस समय हम लोगों ने माना ही नहीं। रोज़ सुबह शाम

0: खींच खींच के खाते। तो उस समय यह एहसास नहीं था कि डायबिटीज भी कोई चीज होती है। आज सुनने में आता है कि ज्यादा मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। उस समय हम लोगों ने माना ही नहीं, रोज सुबह शाम मिठाई खाते थे। तो दिवाली लक्ष्मी का आगमन होता था, कहते हैं ऐसा। अब जिसके पास लक्ष्मी है तो रोज ही उनका आगमन है, लेकिन दिवाली में लोग खास लक्ष्मी की पूजा करते थे और पूजा करके कहते थे कि लक्ष्मी आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहिए और जरूर आइए, जरूर रहिए। इसके लिए पूजा होती थी। पुराने लोग ये भी कहते थे कि 14 वर्ष के वनवास के बाद में राम आए तो उनको ये किया। तो अपना अपना हिसाब से सब लोगों ने उसकी कहानियां बनाई, लेकिन मैंने जो देखा है कि जगमग चारों तरफ दिया जलते थे और पूजा होती थी, और जो बड़े बड़े व्यापारी थे अपनी पुरानी बही खाता निकाल के उसकी पूजा किया करते थे, और लक्ष्मी की पूजा बहुत खास होती थी और हफ्तों पहले चलती, जो हफ्तों बाद तक चलती थी।
1: आतिशबाजी, पटाखे,
0: आतिशबाजी तो जवाब नहीं कि मैं कहूँ कि इतना पैसा, कि शायद मैंने इतना पैसा देखा नहीं होगा कभी इतने की रोज पटाखे जलते थे। आज भी बम्बई शहर में मैं देखता हूँ इतने पटाखे जलते हैं कि मुझे लगता है कि अगर इतने पटाखे नहीं जलाए जाएं तो हम पूरे बम्बई को एक हफ्ते खाना खिला देंगे, इतने पटाखे जलते। खैर वो तो खुशी की बात है, मैं उसमें क्या हुआ, लोगों को अच्छा लगता है, जलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसा अगर गरीबों को बांट दिया जाए तो बहुत अच्छा होता।
1: इस मौके पर आप क्या करते?
0: मैं तो खूब गाना बजाना करता हूँ, सरस्वती माँ की उपासना करता हूँ,

0: खाना पीना खाता हूँ वो भी मेरा नहीं, कहाँ से आ जाता और कैसे खाता हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से। और मेरे पास 25-30 लोग रोज खाते हैं, गुरुकुल में रहते हैं हमारे साथ में, यहीं सीखते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं रहते हैं हमारे साथ में, चाहे देश के हों चाहे विदेश के। ये मेरी कोशिश थी कि मेरा एक सपना था। मैं जब सीखना चाहता था तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और लोगों के पास जाना, बोलना, रिक्वेस्ट करना। तो मैं ये सोचता था कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा होगा, मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन हमारे भारत का अगर कोई टैलेंटेड बच्चा हो, तो जो टैलेंटेड होता है उसका पैसे की कमी होती है। मैंने कहा ना, सरस्वती और लक्ष्मी का झगड़ा है, तो वो क्या करता है, फिर वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है। अगर कोई गुरु फ्री है तो पैसा मांगेगा, क्योंकि उसका समय बर्बाद करेगा। या कोई गुरु ऐसा भी होता है कि चलो भाई ठीक है आ जाना, पैसा नहीं तो आ जाना, लेकिन वो रहते ही नहीं है। वो आज घूम रहा है कहीं लंदन में है, तो परसों अमेरिका में है, प्रोग्राम में है, इधर उधर, तो बेचारे का बड़ा हालत खराब हो जाता है। तो मेरी इच्छा थी कि एक पुरानी जो परंपरा का एक गुरुकुल है, गुरुकुल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो अगर एक हो सके तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा।
1: तो इस संस्था के रूप में वो सपना साकार।
0: बस ये मेरे श्रोतागणों का आशीर्वाद है जो अभी सुन रहे हैं मुझे, उनके आशीर्वाद की वजह से मैंने एक छोटा सा बंबई में गुरुकुल बनाया, जिसको हम कहते हैं वृंदावन। ये हरि का वृंदावन है
1: जी जी।
0: और यहाँ पर जिसकी मर्जी हो, जो भी म्यूजिक से थोड़ा सा उसको ताल्लुकात हो, यहाँ के बैठ सकता है, सीख सकता है। उनसे कोई पैसे नहीं लेते हम, उनके लिए खाने पीने का रहने का फ्री अरेंजमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और हम सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखी हैं।
1: और जब हम कृष्ण की बात करते हैं, तो कृष्ण की अगर प्रेयसी हैं राधा, तो कृष्ण के अधरों के अधिष्ठात्री हैं बांसुरी, वो तो उनकी बहुत प्रिया
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: और उन दोनों के बीच में जो प्रेम है उसका सेतु है एक
0: जी,
1: से।
0: जी।
1: और बांसुरी के रूप में, उसके सुरों के रूप में आपने ये प्रेम दुनिया भर में माना है। कृष्ण, बांसुरी और राधा आपके लिए क्या है?
0: ये तीनों का मिलन हुआ तभी कुछ ऐसी ध्वनि पैदा हुई जिसको हम कहते हैं बांसुरी के द्वारा ध्वनि पैदा हुई। कृष्ण हो या राधा हो या उनका वृंदावन हो या उनकी गोपियां हो, सब मिलजुल के एक अच्छी बात हारमोनी बनी, और उस हारमोनी को हम कहते हैं एक स्वर का आंदोलन। उस स्वर के आंदोलन में जो साउंड पैदा हुआ, जो ध्वनि पैदा हुई है, वो आज सबके दिल में बसी हुई है, चाहे किसी ने बांसुरी सुना हो या न सुना हो, चाहे उनको शास्त्रीय संगीत मालूम हो या न मालूम हो, चाहे उनको राग दरबारी मालूम हो या मालकोस मालूम हो या नहीं, लेकिन बस आनंद उसका प्राप्त करते हैं। एक ही ऐसा वाद्य है, और इस वाद्य में मैंने पाया कि इससे पुराना कोई वाद्य है ही नहीं है।

लक्ष्मी से सरस्वती का झगड़ा, ये तो आपको मालूम है। जिनके पास सरस्वती का थोड़ा सा आशीर्वाद है, लक्ष्मी दूर रहती उनसे थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं किसी से कम नहीं हूँ और किसी चीज़ में मेरे पास कोई कमी नहीं है। जहाँ सरस्वती माँ का आशीर्वाद हो तो वहाँ हम किसी की परवाह नहीं करते। सरस्वती माँ खुद कुछ न कुछ भेजती हैं, आप जहाँ बैठे हैं ये भी किसी का है, मेरा कुछ नहीं है। और जो

0: पंडित जी, अद्भुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। कभी बजाते हुए आपको क्षण भर के लिए भी कोई दिव्य सा अनुभव हुआ?
1: हम जब भी बजाते हैं बांसुरी तो हम ये सोचते हैं कि हमारी पूजा है, ये हमारी आराधना है। चाहे हम अभ्यास कर रहे हों, चाहे हम बच्चों को सिखा रहे हों, चाहे हम किसी का सुन रहे हों, और चाहे हम कार्यक्रम दे रहे हों, हम सोचते हैं जब हम कार्यक्रम देने जाते हैं, हम सोचते हैं हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, और मंदिर में भक्त लोग होंगे, बहुत भीड़ होगी भक्तों की, और मैं जा रहा हूँ, मैं भी पूजा करने जा रहा हूँ, तो मेरे और श्रोतागणों के बीच कोई ना कोई होता है। अब ये कौन होता है अभी तक मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, इतना साल हो गया, लेकिन एक दिन जरूर पकड़ूंगा।
0: वही आपका माखन चूर तो नहीं कहीं?
1: हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस वाद्य को बनाया, तो वही होना चाहिए। और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है मेरे वाद्य का, इन्होंने बड़ा तो कर दिया, कितनी देर बजाते, तो हम दो दो तीन तीन घंटा बजाते हैं। कभी कभी हमारे वृंदावन गुरुकुल में जन्माष्टमी की पूजा होती है 24 घंटा बिल्कुल, और हम लोग नॉन स्टॉप, एक सेकंड भी कहीं स्टॉप नहीं होगा, और तो भगवान तो वहाँ बैठ के खेलते हैं, क्योंकि वो जन्म होता है और फिर उसके बाद तो खेलना शुरू करते हैं, दौड़ भाग शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक क्या कहने से रिश्ता है भगवान के साथ में, हम हमेशा हमारे साथ में होते हैं।

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज के कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त नेहा। साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है संस्कारवान युवा ही सच्चे राष्ट्र के निर्माता। और कार्यक्रम के दूसरे भाग में जिसमें हम विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक के बारे में जानेंगे और साथ ही सुनेंगे बहुत ही मधुर से गीत। तो साथियों, चर्चा की शुरुआत से पहले ही मैं आपको सुनवा दे रही हूँ यह मधुर गीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, हम सभी जानते हैं कि युवा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं, जिनका साहस, नवाचार और परिश्रम देश का भविष्य तय करते हैं। युवाओं में दुनिया को बदलने की शक्ति होती है, अपनी एक और इनमें अपनी एक अलग पहचान बनाने की क्षमता भी होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा उत्साही, ऊर्जावान होते हैं ये, कि अगर उनकी क्षमता को सही दिशा में उपयोग किया जाए तो प्रगति सुनिश्चित कर ही सकते हैं। हमारे देश का प्रत्येक युवा देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इन सब के लिए युवा का संस्कारवान होना बहुत ज़रूरी है। संस्कारवान युवा वह है जो चरित्र, संस्कृति और अनुशासन से समाज को जोड़ता है, और सशक्त राष्ट्र का निर्माण युवाओं के अच्छे संस्कार, शिक्षा और सेवा के प्रति समर्पण से होता है। संस्कारवान युवा वह है जो अपनी संस्कृति, बड़ों के प्रति आदर और अच्छे बुरों की समझ रखता है, और संस्कारवान बनने के लिए नैतिकता, सेवा भाव और सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अपनी नैतिक मूल्यों को अपनाएं, हमेशा ईमानदारी, सम्मान, दया और विनम्रता का पालन करें, बड़ों का आदर करें, अपने माता पिता, गुरुओं और समाज के और बुजुर्गों को सम्मान दें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उनसे सीखें भी, निरंतर ज्ञान अर्जित करें, केवल किताबी शिक्षा नहीं बल्कि व्यवहारिक और जीवन उपयोगी कौशल से भी सीखें। नशे से और गलत संगति से और नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें साथियों, और एक अच्छे संस्कारवान युवा बने। आइए साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक और मधुर गीत।

साथियों, आज है बुधवार और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बुधवार हम विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, तो आज हम जानेंगे सर जेम्स चैडविक के बारे में। जेम्स चैडविक विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने मुख्य रूप से उन्हें न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव किया। 20 अक्टूबर 1991 को चेशायर इंग्लैंड में जन्मे चैडविक सामान्य परिवार से थे। उनका परिवार बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। पैसों की कमी के कारण उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय सरकारी स्कूल से की और 1911 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। और यहाँ इनके गुरु महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। उसके बाद 1913 में चैडविक जर्मनी जाकर वैज्ञानिक हंस गीगर के साथ रिसर्च कर रहे थे। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और जर्मनी ने उन्हें विदेशी दुश्मन मानकर बर्लिन

के पास एक कैदी शिविर में बंद कर दिया। लेकिन चैडविक ने जेल के अंदर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहाँ के अन्य कैदियों के साथ मिलकर एक छोटी सी लैब बनाई और कुछ घरेलू सामानों का उपयोग करके रेडियोधर्मिता पर प्रयोग जारी रखे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वह इंग्लैंड लौटे और कैम्ब्रिज की कैवेंडिश लैबोरेटरी में रदरफोर्ड के साथ काम करने लगे। उस समय वैज्ञानिक परेशान थे क्योंकि परमाणु का वजन केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वजन से मेल नहीं खा रहा था। चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार की, इससे एक रहस्यमय किरण निकली और उन्होंने साबित किया कि यह किरण वास्तव में एक नए कण से बनी है जिसका वजन प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं है और इसके उदासीन होने के कारण इस कण का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। तो इस तरह चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और इस खोज के लिए उन्हें 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। साथियों, हमारी चर्चा आगे जारी है। अब आपको हम सुनवा रहे हैं एक और मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने न्यूट्रॉन के बारे में जाना, अब हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन होता क्या है। हर वस्तु और बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर तीन मुख्य कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन जिस पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन इस पर कोई आवेश नहीं होता। साथियों, न्यूट्रॉन की खोज ने परमाणु रहस्य को सुलझा दिया था। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। बाद में इसी खोज का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया गया। उसके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चैडविक ने परमाणु बम विकसित करने वाली प्रसिद्ध मैनहट्टन परियोजना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश वैज्ञानिकों के दल का नेतृत्व किया था। यह दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाला प्रोजेक्ट था। युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया इन्हें, और जिसके बाद उनके नाम के आगे सर लगाया जाने लगा। साथियों, आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और मधुर गीत।

साथियों, इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आपसे होगी मुलाकात हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक आपकी दोस्त नेहा।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.3 MHz पर। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज की शाम, लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रवीण शर्मा। सभी को नमस्कार। श्रोता आगाज कर रहे हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के गाए गीत से। शैलेंद्र के बोल हैं संगीत SN त्रिपाठी का। फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन।

हमसाया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ। शैवान रिजवी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का।

आज की शाम में बस इतना ही। अपने दोस्त प्रवीण शर्मा को दें अनुमति। नमस्कार, यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है।

0: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए पहले इस सभा के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। अभी 7:21 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। 7:30 बजे से ग्राम सभा कार्यक्रम हम भोपाल के इंद्र सुरीले करेंगे। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। ये कार्यक्रम भी भोपाल से ही अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 8:15 बजे हमारे केंद्र से होगा फिल्म संगीत और रात 8:30 बजे से विविध भारती मुंबई के विविध कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये था विवरण इस सभा के शेष कार्यक्रमों का।

आइए अब चर्चा कर लें कल के कार्यक्रमों की। कल सुबह भक्ति धारा कार्यक्रम होगा 6:05 पर, 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान में। कल का प्रसंग होगा सुरेश वाटकर और साथियों के स्वर में। लोक रंजनी में संतोष चौरसिया और साथियों के गाये पारंपरिक बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 6:45 पर। सुबह सवेरे कार्यक्रम सुबह 7:21 पर प्रसारित होगा। इसमें फिल्म संगीत के साथ आप सूचनाएं भी सुनेंगे।

सुबह 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 9:00 से। सुबह 9:30 एक फनकार कार्यक्रम में कुछ युगल गीत आपको सुनवाए जाएंगे। जिले की चिट्ठी सुबह 10:00 प्रसारित होगी जिसे हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर फोन इन प्रोग्राम हेलो FM गुना का प्रसारण होगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे राजकुमार कौशल और दिन में 11:00 से कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

शाम 6 बजे सुगम संगीत में कुछ भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे और शाम 6:30 बजे आज की शाम में फिल्म संगीत होगा। शाम 7:21 पर प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज की बात का विषय होगा किसान भाई पशुओं के प्रति मित्रवत व्यवहार रखें और सामूहिक कृषि चर्चा में खेती किसानी में सामूहिक कार्यों पर भी चर्चा होगी और भेंट वार्ता भी इस कार्यक्रम में होगी। साथ ही होंगे कुछ पारंपरिक बुंदेली लोकगीत। रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत और रात 8:15 से विविध भारती मुंबई के विविध कार्यक्रम मनोप्रसारित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे विवरण इस सभा के शेष और कल के कार्यक्रमों का।

FM 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, उज्जैन बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में कल अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरा होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि AI क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक GPU स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6-लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। इससे कानपुर कबराई का सफर 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। यह परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में

0: आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉक्टर यादव ने इस मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत से 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। यह राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
1: मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपए की राशि अंतरित की जा रही।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले के तलून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कल रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगार उन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। बात खेल की। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब एक साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। आज उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मॉनसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में

खनन कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व टीम ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुणा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी। लोक गीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ पारंपरिक लोक गीत। पहले सुनते हैं ये देवी गीत, स्वर है बुंदेल सिंह लोधी और साथियों का।

0: बुंदेली समाचार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भैया जी जी, हर रोज देखो, जब अपन जैविक रूप से जो अपन को फसल को उत्पादन होते हैं, अगर उनको अपन सेवन कर रहे थे तो ना केवल अपने स्वास्थ्य के लाने वो महत्वपूर्ण होते, बल्कि अपन को उसे अधिक आर्थिक लाभ भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही कछु विशेष प्रकार की जानकारी लेके आज हमारे संगे उपस्थित भए हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा, उनसे बातचीत करिए आनंद कृष्ण वर्मा ने। तो सुनाते हैं भेंटवार्ता, जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य पर्यावरण, गजराज सिंह वर्मा से आनंद कृष्ण वर्मा की बातचीत।
5: किसान भाइयों बहनों, इस समय हमारे प्रदेश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है, जो कि 1 जून से 30 जून तक चल रहा है। और इस अभियान के अंतर्गत किसान विकास केंद्र और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से संपर्क करते हुए खेतों को बचाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इन सब में सबसे अधिक जो जोर दिया जा रहा है वो है जैविक खेती। जैविक तरीका से खेती करके हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को और फसल की गुणवत्ता को अच्छा रख सकते हैं, और इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है उन्नत कृषक श्री गजराज सिंह वर्मा को, जो कोलास कला जिला सीहोर में खेती करते हैं, किसानी करते हैं और उन्नत कृषक के रूप में जाने जाते हैं। गजराज सिंह वर्मा जी से हम लोग चर्चा करेंगे जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण। तो वर्मा साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
6: जी। नमस्कार सर।
5: वर्मा जी, ये बताएं कि सबसे पहले कि आप जैविक तरीका से खेती करने के बारे में कैसे आपको प्रेरणा मिली है, जैविक तरीका से खेती करना आपने कैसे शुरू किया?
6: एक तो जैविक खेती करने से मतलब जो उसमें उगाए गए अनाज रहते हैं उसको खाने से एक तो अपन स्वस्थ रहते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है
5: जी।
6: और जो अपनी प्रकृति है वो भी बचती है। केमिकल, आजकल केमिकल बहुत अधिक मात्रा में मिलाए जाते हैं, उसके कारण काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
5: हाँ।
6: तो उससे काफी बीमारियों से भी अपन बच सकते हैं। वो जैविक खेती की उगाई गई फसल काफी स्वाद अच्छा रहता है उसका, और उसकी सेहत के लिए भी काफी फायदेकारक रहता है, और उससे धरती माता भी सुरक्षित रहती है और अपन भी सुरक्षित रहते हैं। तो जो मार्केट में जो आजकल केमिकल आ रहे हैं उनसे अपन बच सकते हैं। तो जो जैविक खेती करना है वो बहुत आसान तरीका है, आसानी से खेती कर सकते हैं
5: जी। आपने तो बहुत अच्छे से आपने जैविक खेती के महत्व के बारे में और उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली जैविक खेती करने के बारे में?
6: सबसे पहले मैंने एक एकड़ से स्टार्ट किया था अपने परिवार के लिए और अपने लिए
5: जी।
6: फिर उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते हमने काफी, आज 15 से 20 एकड़ पे जैविक खेती कर रहे हैं
5: जी।
6: और उससे काफी कस्टमर भी बना रखे हैं
5: जी जी।
6: तो उससे काफी लोगों को भी फायदा होता है और अपन भी स्वस्थ रहते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है
5: जी।
6: तो उसके काफी फायदे होते हैं।
5: तो आपने बताया कि जैविक खेती करने से आपको अच्छा लाभ मिल रहा है और उसके साथ साथ में आप स्वस्थ भी हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे हुए हैं, और साथ ही आपकी खेती से जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो फसलें निकल रही हैं, वे उनके जो ग्राहक हैं वे भी इसी के साथ साथ में स्वस्थ रहते हैं
6: जी जी जी।
5: तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ये बताएं कि जैविक खेती में और जो हमारी रासायनिक तरीके की जो खेती होती है उसमें बुनियादी तौर पर अंतर क्या होता है?
6: जैविक खेती में थोड़ी सी जो एक तो समस्या आती है खरपतवार की
5: जी।
6: तो खरपतवार हाथ से निकालना पड़ता है, तो उसके बहुत आसान तरीके आजकल चल गए हैं, कुल्पे से और डोरे चल रहे हैं, काफी कृषि यंत्र आ रहे हैं पूरा खरपतवार निकालने के लिए
5: जी, जी।
6: उसके बाद हाथ से निंदाई करना पड़ती है। और रासायनिक खेती में ये रहता है कि आदमी एक दवाई स्प्रे कर देगा और उससे पूरे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें उसको कम मेहनत रहती है। जैविक खेती में थोड़ी सी खरपतवार की समस्या आती है, तो वो जरूर आपको हाथ से

0: डालना पड़ता है और रासायनिक खेती में केमिकल से निकल जाते हैं।
1: तो आपका मतलब कहने का ये है कि जैविक खेती में थोड़ी सी मेहनत जरूर रहती है, लेकिन रासायनिक तरीके से यदि हम रसायनों का प्रयोग यदि करते हुए हम यदि अपने खेतों में ये काम करें तो उससे काम तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, है ना?
0: जी जी।
1: तो ये भी आपने एक अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, जैविक तरीका से खेती करने में किस तरीके की तुलना की जा सकती है कि जो रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों में से सस्ती कौन सी पड़ती है?
0: वैसे तो जैविक खेती सस्ती पड़ती है, क्योंकि जैविक खेती में आप जो दवाई है वो दवाई जो स्प्रे करते हैं वो दवाई अपने खेत के आसपास ही पेड़ रहते हैं, जैसे नीम है, बेसरम है, अकौआ है, सीताफल है, करंज है, तो इसका आप पांच पत्ती काढ़ा बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा एक ब्रह्मास्त्र रहता है, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के गाय के गोमूत्र में उसको मिक्स करके उसको भी अपन खेत में स्प्रे कर सकते हैं। एक नीम आयल है, तो ऐसे बहुत सारी दवाई जो मार्केट में आज दो दो तीन तीन हजार रुपये लीटर दवाई आ रही है, तो उसकी अपेक्षा ये दवाई बहुत सस्ती पड़ती है।
1: हाँ, और अपन चाहे तो खुद भी बना सकते
0: हैं उसको, खुद ही बनाते हैं लगभग सभी लोग जो जैविक खेती करते हैं वो खुद ही बनाते हैं। और उससे ये रहता है कि मतलब एक तो उसी फसल को अपन उसी दिन खा लेंगे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और जो मार्केट की जो केमिकल वाली फसल रहती है उसमें काफी दिन तक जहर का असर रहता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक रहता है।
1: जी, ये आपने एक अच्छी बात बताई। अब ये बताएं कि जैविक तरीका से खेती करने में आपने ये तो बताया कि खरपतवार का नियंत्रण हमें खुद ही करना होता है, है ना, हाथ से करना पड़ता है, इसके अलावा कीटों का नियंत्रण जैविक तरीके से कैसे होता है?
0: कीटों का नियंत्रण जैसे मैंने बताया पांच पत्ती काढ़ा बना सकते हैं आप, ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, नीम आयल स्प्रे कर सकते हैं, छाछ की दवाई बना सकते हैं, ऐसी देसी दवाई काफी बनती है, उससे कीट एकदम शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना पड़ेगा। यदि एकदम कीट लगने के बाद आप देसी दवाई स्प्रे करेंगे तो फिर वो दवाई असर नहीं करती है।
1: अच्छा।
0: उससे ये है कि फसल 10 से 15 दिन की हो जाए फिर आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे उस पर कर सकते हैं, तो फिर आपको कीट की समस्या नहीं आएगी।
1: जी, अच्छा, और कीटों के साथ साथ में एक दूसरी समस्या और आती है फसलों में कि उनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, तो रोगों के नियंत्रण करने के लिए जैविक कौन से जैविक तरीके हो सकते हैं?
0: जब आप जैविक खेती करना स्टार्ट कर देंगे तो रोग तो अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद रहता है और केंचुआ खाद रहता है, या कहीं बोन मील यूज करते हैं जैसे राग फास्फेट यूज करते हैं
1: जी,
0: तो ऐसी काफी ऑर्गेनिक देसी दवाइयां या खाद वो आते हैं, तो ये बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब मैं करीबन 15-20 वर्ष से कर रहे हैं तो अभी हमारे खेत में कोई बीमारी नहीं आती है, परंतु प्रत्येक हर वर्ष आपको मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए।
1: जी, जी।
0: मई जून में आपको मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष एक वर्ष छोड़ के आपको मिट्टी पलटना चाहिए।
1: जी।
0: तो मिट्टी पलटने से काफी जो गहरी जुताई बोलते हैं अपन, गहरी जुताई करने से मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, तो उससे पोषक तत्व काफी बढ़ते हैं खेत में।
1: जी जी। अच्छा वरुण साहब, आप अभी बता रहे थे कि मिट्टी परीक्षण ये एक बड़ी जरूरी चीज है, और जो अभी खेत बचाओ अभियान चल रहे हैं उसमें भी इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मिट्टी परीक्षण किसानों को कराते रहना चाहिए, नियमित रूप से कराना चाहिए, इसके लाभ क्या है और इसको कैसे करवाया जाता है?
0: मिट्टी परीक्षण के काफी लाभ रहते हैं, जैसे जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको मिट्टी परीक्षण में ये पता पड़ जाता है कि मेरे एक एकड़ खेत में 10 किलो यूरिया देना है, जबकि वो एक एकड़ में 50 किलो यूरिया डाल रहा तो वो 40 किलो यूरिया उसका वेस्टेज जा रहा, उसकी उसको जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन की, और आप 10 किलो की जरूरत है, अपन 50 किलो डाल रहे हैं तो 40 किलो वेस्टेज जा रहा, फास्फोरस की कितनी कमी है वो भी बता देते हैं, जिंक की कितनी कमी है, तो ये टोटल मिट्टी परीक्षण में आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे खेत में इतना मटेरियल डालना है। यदि आप मिट्टी परीक्षण नहीं करवाएंगे तो फिर आप बहुत अधिक मात्रा में खाद देंगे और उसका काफी फसल को भी नुकसान रहेगा और अपने को भी नुकसान रहता है उसका।
1: अच्छा, तो ये आपने अच्छी चीज़ बताई कि मिट्टी परीक्षण हमें कराते रहना चाहिए। अच्छा, बीज को उपचारित करके भी कुछ खेती की जाती है जिसमें कि लाभ अच्छे तरीके से मिलता है, तो बीज का उपचार किस तरीके से किया जाता है, उपचारित?
0: जैसे ऑर्गेनिक जैविक खेती में राइजोबियम से

0: तैयार करते हैं तो उससे एक फंगीसाइड जो फंगस लगती है वो बीज में फंगस नहीं लगती है। और रासायनिक खेती में भी काफी बीज उपचार आते हैं तो उससे एक तो अंकुरण की क्षमता अधिक बढ़ जाती है, दूसरा कई बीमारियां नहीं लग पाती। शुरुआत में जब पौधा उगता है उसी समय उसको बीमारी ग्रस्त कर लेती है तो फिर वो अच्छा उत्पादन नहीं देता है, तो बीज उपचार करना बहुत अति आवश्यक रहता है।
1: जी जी, हमें जैविक तरीका से यदि हम खेती कर रहे हैं तो और कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए?
0: एक तो आपके जैसे खेत है तो किसी कोई बाजू में आपका रासायनिक खेती कर रहा है तो उसके खेत का पानी आपके खेत में बह के नहीं आना चाहिए
1: जी।
0: तो आपको जो आपकी मेड़ रहती है उसको बफर जोन बोलते हैं,
1: हाँ।
0: उसको आपको ऊंचाई पे करना पड़ेगा। दूसरा आपको लास्ट अपने खेत के किनारे पे थोड़ी ऊंची वाली फसल बोना पड़ेगी तो उससे जो कि दूसरे वाला केमिकल का स्प्रे कर रहा है तो उसकी जो हवा है वो अपने खेत की तरफ नहीं आए तो उससे वो भी आपको देखना पड़ेगा, तो उससे काफी फायदा रहता है
1: जी। अच्छा वर्मा जी, एक बात ये बताएं, जैविक तरीके की जो उपज होती है उसका कुछ मानकीकरण वगैरह भी होता है क्या, उसके बारे में बताएं, उसकी मार्केटिंग कैसे करी जाए, उसका विपणन कैसे
0: किया जाता है? आजकल क्या है, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है भोपाल में, वहाँ आपका पंजीयन होता है।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे लैब टेस्टिंग भी होता है और इन्फेक्शन के लिए भी वो प्रत्येक वर्ष आपके खेत में जाते हैं और वो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ से एक प्रमाण पत्र देते हैं आपको
1: जी।
0: वो आप इस खतरे में खेती कर रहे हैं तो वो आपको पूरा वो रिकॉर्ड देंगे, फिर आपको पूरा वर्ष भर की डायरी मेंटेनेंस करना पड़ेगी, आज हमने खेत में निंदाई करी है, आज हमने ये दवाई डाली
1: अच्छा।
0: है, बीज आज ये डाला है
1: जी, जी।
0: इसका हाईवेस्टिंग इस दिन किया है, फिर इसका उत्पादन इतना आया है और इसको इस रेट में हमने बेचा है
1: जी, जी, जी।
0: तो वो पूरा रिकॉर्ड रहता है तो वो काफी आसान है और जी भी अपने भोपाल में उसका पूरा ऑफिस बना हुआ है और वो पूरी समस्या का हल निकल जाता है
1: जी। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जैविक तरीका से ऑर्गेनिक के जो फसलें होती हैं वो महंगी होती हैं, तो ये क्या बात है इसके बारे में?
0: एक जैसे जैविक खेती करते हैं तो उसमें थोड़ी सी लेबर कास्ट काफी अधिक लगती
1: है,
0: हाँ। दूसरा फिर आप उसको प्रोसेसिंग देसी विधि से करते हैं, जैसे आजकल दालें घट्टी से बनती है, वो घट्टी की दाल बनाने में काफी लेबर की कास्ट आती है
1: जी।
0: तो उसका प्रोसेसिंग करने में थोड़ा सा क्या है कास्ट ज्यादा आती है, इस वजह से मार्केट के जो सामग्री रहती है उससे थोड़ी कास्ट उसकी अधिक रहती है
1: जी। किसानों को कैसा फायदा होता है जैविक खेती करने से, फायदा है या नहीं?
0: नहीं, फायदा है और आजकल जैविक सामग्री लोग गांव-गांव ढूंढ रहे हैं उसको, और आजकल जो पहले 40-50 वर्ष पहले जो स्वाद था वो आज की मार्केट की सब्जियां इनमें नहीं है, तो लोग गांव ढूंढ रहे हैं कि कहां पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है और वो खेत से खरीद के लेके आते हैं तो उनको ये एहसास हो जाता है कि हमने 50 वर्ष पहले जो लौकी खाई थी
1: हाँ।
0: वो आज टेस्ट इसमें आ गया,
1: वैसा टेस्ट आ गया,
0: वैसा टेस्ट आ गया, तो काफी लोग गांव पहुंच रहे हैं ढूंढ रहे हैं और मार्केट अपने आप मिल जाता है, मार्केट की कोई समस्या नहीं आती है।
1: ठीक, आप हमारे जो किसान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा प्रत्येक किसान भाई से निवेदन है कि कम से कम आप मार्केट में नहीं बेच सके तो कम से कम अपने परिवार के लिए जैविक खेती करें, एक एकड़ आधा एकड़ 25 डिसमिल जो भी आप कर सकते हैं, परंतु आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें, आप स्वस्थ रहें और फिर और अधिक आप करना चाहें तो और अधिक जमीन पे जैविक खेती करिए तो काफी लोगों को फायदा रहेगा और अपन स्वस्थ रहेंगे, भारत स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से अपन मुक्त हो जाएंगे
1: जी। तो गजराज सिंह वर्मा साहब, आप कुलांस कलां जिला सीहोर कि आप उन्नत कृषक हैं और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसानों को जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भैया जी हरे सुन रहे थे जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण, विशेषज्ञ थे गजराज सिंह वर्मा और उनसे बातचीत कर रहे थे आनंद कृष्ण वर्मा। तो हमारे भैया जी हरे जरूर ये जानकारी हासिल करके लाभान्वित हुई हैं। और भैया हरो, देखो आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, डॉक्टर्स डे। आज को दिन ऐसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कहे कि सभी डॉक्टर अधिक परिश्रम से अपने मरीजों को स्वस्थ कराते हैं और बल्कि हम कह लेवे कि उनको एक नव जीवन दे देते हैं, राष्ट्र के नागरिकों को एक निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं जिसे वे सबके सम्माननीय बन

लाते हैं। ऐसे कई सभी डॉक्टरों को आज हमारे संगे पूरा आकाशवाणी परिवार ग्राम सभा के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो सभी डॉक्टर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब सुन लेते हैं बहादुर सिंह नरवरिया और साथियों के स्वर में गाओ वाओ जो देवी गीत।

दिवस आज यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई लो वन महोत्सव मनाओ जात है। पूरे सप्ताह भर देश भर में वृक्षारोपण पर्यावरण जागरूकता उत्सव के रूप में मनाओ जात है। और जो महोत्सव मनावे को अगर अपन बात करें तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में पेड़ लगावे की आदत के संगे संगे उनको संरक्षण के महत्व को भी समझावे की बात है कि वे पर्यावरण के महत्व को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा ना केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखवे के कारण पेड़ लगावें बल्कि ये जरूरी है कि जो पेड़ लगाए हैं उनको संरक्षित भी रख सकें। और जब वे संरक्षित हुए हैं तो ना केवल वे अपने लाने लाभकारी हुए हैं तो ऐसे लाभ के संगे हम सुन लेते हैं जो वृक्षारोपण गीत डॉक्टर अरविंद सोनी के स्वर में।

भैया जी जी हरो, आज हम अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस सुई मना रहे हैं। और जो दिवस मनावे को अगर बात करें कि क्या उद्देश्य है, तो हम स्वस्थ आहार लेवे जिसे हम सभी जने स्वस्थ बने रहे। काहे कि अगर जब अपन टिकाऊ कृषि पद्धति के माध्यम से अपन कृषि करते हैं, तो ना अपन को सांस्कृतिक महत्व के द्वारा अपन को जो अपनी फसलें हैं वो अपन को मिलती रहती हैं, बल्कि अपन को अच्छे जो हैं फल हैं सब्जियाँ हैं वो मिलती रहती हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लाने जरूरी होती हैं। हर बरस इसको एक दिवस विषय के रूप में मनाओ जात है, और ई वर्ष जो दिवस मनावे के लाने जो फल चुनो गो है वो है खजूर, और इखो दव गो है फ्रूट ऑफ द ईयर। तो सभी जने खूब फल खावे और स्वस्थ बने रहे, और जब स्वस्थ रहते हैं तो अपनो मन भी अच्छो रहते। सुन लेते हैं आरती तिवारी के स्वर में जो लोक भजन।

भैया जी जी हरो अबिरिया हो रही है चलवे की, सो आप औरों को कल के कार्यक्रम सो ही बताओ चले। भुंसरा कृषि चर्चा में सुन में खरीफ फसलों की बुआई एवं प्रबंधन और वाचक शुरू हुई है मेदनी प्रताप सिंह को, और संजय सुने भेंट वार्ता वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहवे के लाने आयुर्वेद की सलाह है, और विशेषज्ञ हुई है डॉक्टर ऋतु पांडे, और आवारती बहन को देव आज्ञा राम राम।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहां कहां किस स्तर पर दिखेगा।
2: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
1: जी,
2: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 रुपए, 95,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना बीबीजी रामजी है इसका मूल मकसद यह है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूं कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूं तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव यह है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
1: जी।
2: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अब देखिए देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का, स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं, उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं कि

0: जहां पर ग्रामोद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें। ये पांच खास बातें हैं जो वीवीजी राम जी को एक नए स्वरूप देती है और जो कि आज से लागू हुआ।
1: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल यह है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
0: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है। यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी है वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहाँ पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है। अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें यह समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहाँ पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया। इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
0: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रुपए थी, अब वो 327.40 रुपए हैं। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का और राज्य वार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 379 रुपए है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, 2/3 आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
0: यही पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं। अब आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी

0: है वो आपके सामने रख सकते हैं, तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है। तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है, तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
1: यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
0: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जाकर के उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर बीबीजी राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक जिसको कहते हैं ना ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
1: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
1: हम पीछे ना रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ोन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए पहले सुनते हैं अभिमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सोनू निगम का गाया हुआ वास्तव फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है समीर।

कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ गीत आपने सुना। समीर ने लिखा था, जतिन ललित ने सुरों में पिरोया था। फिल्म का नाम था अलबेला। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहब्बतें फिल्म का ये गाना।

इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा।

0: की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ TB मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए

0: अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।

0: इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और डीआर कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: संघर्ष फिल्म का ही गाना आप सुन रहे थे, सोनू निगम का गाया हुआ। समीर ने गीत लिखा था और जतिन ललित ने संगीत से संवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना साया फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत से सवारा है MM क्रीम ने।

आइए अब सुनते हैं खिलाड़ी फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक का गाया हुआ। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, शुरू में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई यहाँ।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे समरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो टल गया।
1: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ आग, कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं, यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

0: वो खरीदार नहीं हो सकता।
1: ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आंच केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। हाँ, लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है, और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
1: संगीतकार रवि,
3: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना के, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, तुमने कूदे प्याली में।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने

0: योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 km long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity.